0: श्लोक महला पहला पढ़ पढ़ गड़ी लदी है पढ़ पढ़ परियसा पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड़ी है खा पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते माँ पढ़िए जेते यार जा पढ़िए जेते सा नानक लेखे एक गल और हम मैं चकना चाक महला पहला
1: लिख लिख पढ़िया तेता कड़े बो तीर्थ भव्या ते तुलवे बो पेख किया देही दुख दिया सोवे जिया अपना किया अन्ना खाया साध गवाया बोध पाया दूजा पाया वस्त्रन पैरे अहनस कैरे मोहन भूता कौ जा गगरवन सुता पगु पे तन अपना किया कमाना अलमल खाई सिर छाई पाई मूर्ख खंदे पतंगवाई बिनना वै किछ थाए न पाई रहे बेवाणी मड़ी मसाणी अंध न जाने फिर पछताणी सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए।

नानक मेर शरीर का एक रथ एक रथवा जुग जुग फेर बटाई है ज्ञानी बजेता है सतयुग रथ संतोख का धर्म ग्रथवा हो त्रेते रथ जते का जोर ग्रथवा हो द्वापर रथ तपे का सत ग्रथवा हो कलयुग रथ अगन का कल युग रथ अगन का कूड़ ग्रथवा हो।

0: न जाए तन सो मन स नानका जोगल चले पाए चौकड़ मलनाया बह चौके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुरु ब्राह्मण थिया ओ मुआ ओ चढ़ पिया वे तगा गया महला पहला
1: लख चोरियां लख जारियां लख कुड़ियां लख गा लख ठगियां पैना मियां रात नसीना

0: श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण को का लाभ को बर्तन न जाई तोती टिकत जप माली तान मलेशा खाई अंतर पूजा पढ़ कते पा संजम तुरका पाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाय तरंदा महला पहला
1: मानस खाने कर निवाज श्री भगत तन गलता तन

जगत कसाई नील वस्त्र पहरे प्रवान मलेश ताले बुझे प्राण अपाख्या का कुठ बकरा खाना चौके ऊपर किस न जाना देखा चौका खड़ी का रूप आए बैठे कुड़ियार मत पे टैब

जी राग वडहंस महला पहला कर पंजवा अलाहनिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद

महाराज जी कहिंदे जेड़ा ओ सिरजनहार सच्चा अकाल पुरख परमेश्वर वाहिगुरु जी ने अलख जिन्हों लखिया नहीं जा सकता अपनी मत अपनी बुद्ध दे नाल जिन्हों लखिया नहीं जा सकता जानिया नहीं जा सकता वो साड़ी सोच तो परे है बोध मंडल तो परे है अपारो जिदा कोई अंत नहीं है परे तो परे अगां तो अगां ओ परमेश्वर जिदा जिदा कोई परला किनारा नहीं है जिदा कोई अंत नहीं है तांका अंत ना पाया ते ना किसी ने अज तक उदा अंत पाया जे आपां अज तक दा समा देखिए ते किन्ने फिलोसफर आए किन्ने विज्ञानक आए ब्रह्म ज्ञानी किन्ने आए हुण तक किसी ने भी उस परमेश्वर दा अंत नहीं पाया ते गुरु महाराज भी नहीं किते जिक्र करदे कि उदा अंत पाया जां पै गया जां पै जाएगा महाराज कहिंदे उदा अंत ना पिया ते ना कोई पा सकदा क्योंकि वह बेअंत है। हाँ कईयां ने कोशिशां कीतियां जरूर ने पर कामयाब नहीं होए कई कोशिशां कर रहे ने जां होर करनगे कामयाबी इदां नहीं मिलनी क्योंकि वह बेअंत है उदा अंत नहीं पाया जा सकता उदे विच समावना है उदा अंत नहीं पाउणा जे आपां कहीए वी आपां पाठ कर रहे हां विचार उदा अंत पाउण लई इह साडा भुलेखा है असीं उहदे विच समा जाइए इस लई साडा इह बाणी दा अभ्यास है उहदा अंत पाउण वास्ते नहीं अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत न पाया जाए इह अंत न जाणे कोए बहुता कहीए बहुता होए रोज़ असीं पाठ करदे हां इसलिए महाराज जी कहिंदे ने कि तांका अंत ना पाया किदा जिहड़ा अलख है अपार है और ये सारी सृष्टि का सिरजनहार है जिन्हें कुदरत नूं साजिया है कोई भी उहदा अंत जिहड़ा वो नहीं पा सकता।

गुरु महाराज ने ये फिर दोबारा रिपीट किया। तीसरे पदे दे विच आरंभ विच पंक्ति आख के फिर तीसरे पदे की समाप्ति च महाराज ने दोबारा दोहरा दिता। क्यों? पहला महाराज ने आख्या जो तिस भावै समरथ सो थीआ हीलड़ा ए संसारो। असी आख्या महाराज थोड़ा जा समझाओ, ते महाराज कहिंदे ओ हर एक कण हर एक थां ते समाया होया है, सबना दे विच ओ वरत रहा है, ये सारी सिरजना उस मालक दी कीती हुई है जिदा अंत कोई पा नहीं सकता, जिन्हें एक मन हो के त्याया उदा आउना मुबारक उदा आउना सफल हो गया। वो इन्नी को पावर रखता है, इन्ना को सर्व कला समर्थ है कि वो ढा के फिर दोबारा बना के फिर दोबारा ढा सकता है। ये जड़ा उपजना बिनसना ये परमेश्वर दे हाथ है, जम्मन भी उहदे हाथ है ते मरना भी उहदे हाथ है। क्या जाना किव मरेंगे कैसा मरना होए, सानू नहीं पता मौत किवें आउणी है, कदों आउणी है, कित्थे आउणी है, किहड़े रूप विच आउणी है, सानू नहीं पता। पर असी हर वेले उहनू याद रखना है, चलो जिद्दां भी आउणी है, जिस रूप दे विच भी मौत ने आउणा ते है, उहदे तो बचिया ते जा नहीं सकदा। मलकल मौत जां आवसी सब दरवाजे भन, तिना प्यारियां भाइयां अगे दिता बन, वेखो बंदा चलिया चहु जणिया दे। पर मरना ते है, मौत आउणी आउणी है, चिंता तां की कीजी है जो अन्न होनी होए। ये मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई, मरना ते है। पर महाराज कहिंदे जे मौत आउणी है किस रूप च आउणी है, किहड़े रूप विच उहने आउणा है, ये सानू नहीं पता। पर असी की करिए, असी उहनू हर वेले याद रखिए विच, पलो जिद्दां भी आउणी है, आउणी ते है ही है मौत, मरना ते है ही है, पर कम से कम उहनू हर दम याद तां रखिए, हर सवास। क्या जाना किव मरेंगे कैसा मरना होए, जेकर साहिब मनो ना विसरै ता सहला मरना होए। वो नहीं विसरना चाहिदा, वो नहीं भुलना चाहिदा। इस वास्ते महाराज जी कहिंदे ने ये उहदे हाथ विच है, उहने किनू ढाउणा है, किनू बनाउणा है, किनू सवारना है, किनू मिटाउणा है। ये ते दुनिया दे विच एक बहाना ही है, बाकी सब कुछ जो होना उस मालक दे हुक्म विच है। इसलिए महाराज जी ने रिपीट किया। साहब जी कहिंदे जो तिस भावै समरथ सो थीऐ, वो समरथ है, सर्व कला समरथ, उहदे उत्ते किसे दा जोर नहीं चलना। उहदा जोर सारियां उत्ते चल जाणा, पर किसे दा जोर उहदे ते नहीं चलना। वो समरथ है, उही कुछ होना। हीलड़ा ए संसारो, संसार लई ते एक बहाना है, या ते बहाना बन गया। कई बारी ये भी जिक्र कीता कि सिर्फ मौत ही नहीं, जन्म भी उदा हुक्म है। कई बारी सानू उदा जन्म भी परवान नहीं हुंदा, असी कहिंदे असी नहीं, क्योंकि मंगिया पुत सी मिल गई धी, मिल मंगी सी धी मिल गया पुत, इहदा मतलब मेरी मर्जी थोड़ी चलनी है, ये ते उहदा हुक्म है, उन्हें मैनू धी देनी है कि पुत देना है। मेरा जन्म कित्थे होना है, किहड़े माँ बाप दे रूप दे विच मैनू माँ बाप मिलने आ, ये ते उहदे हुक्म विच है। इसलिए महाराज जी कहिंदे ने कि तू एक मन एक चित हो के हर वेले उहनू त्याया।

माया की है संसार, ये संसार माया है ना, ये शरीर भी तो माया ही है, शरीर वास्ते रो रहे हैं, संसार वास्ते रो रहे हैं। महाराज गुरु साहब जी कहते रोवन सगल बेकारो, तुहाडा सारे तरह का, एक तरह का रोना नहीं है, भी ध्यान रखना, कई प्रकार का रोना है, कई प्रकार। सगल ताई महाराज ने वरते है, जिन्ने तरह के तुहाडे रोने हैं सब बेकार ने, गाफल संसारो, क्योंकि तुसी संसार विच बे जिहड़ा गाफल हो गए हो, बेफिकरा हो गए हो, तुहानू पता ही नहीं भी मौत नेड़े आ गई है, वह फिक्र नहीं है, उदी चिंता नहीं है, अगों नेड़ा आया पिछा रहा वो चिंता नहीं है, उदा फिक्र नहीं है, उधरों बेपरवाह है, पता नहीं अगला साह मिलना भी है कि नहीं मिलना जीवन वास्ते, उदी चिंता नहीं है, पर जो कुछ जोड़िया इकट्ठा किया उदी चिंता है की होएगा की बनेगा। अंतले समय दे विच वी ए मायावी पदार्थां नूं ही याद कर रहा है। सतगुरु महाराज जी कहिंदे रोवण सगल बेकारो गाफल संसारो, इस संसार विच गाफल प्राणी, ये तेरा जिन्ने भी तरह का रोना बेकार है, माया कारण रोवे, तू संसार तू ये पदार्थां दी खातर रो रहे हैं, शरीर करके रो रहे हैं। आपां सारे ये शरीर माया भी है, संसार माया भी है। सतगुरु महाराज जी इस

दुनिया विच जेड़ा आया उन्हें एक दिन जाना है, कोई सदा रहने वास्ते नहीं आया। इत्थे जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारी। इत्थे जेड़ा आया उन्हें चलना है, फिर तू क्यों कुड़ियार होया पिया, क्यों झूठा हंकार करके बैठा होया। सवेर तो लैके रात तक मैं कर रहा है, ये तेरा अहंकार भी झूठा है। क्योंकि जदों शरीर छड़ना ना, जिदे जिदे जिदे ते तू हंकार मान कर दे, वो सब इत्थे ही रह जाना, नाल ते कुछ नहीं जाना। जां जिन्हें साढ़े तो पहला गए ने, जो वो लैके गए कुछ सोना चांदी हीरे मोती जमीना जायदादा, वो लैके गए कुछ हीरे मोती सोना चांदी जायदाद, वो चलो ये तो छड़ो, उन्होंने नाम ते जड़ियाँ रजिस्टरियाँ वो नहीं नाल ले जा सकते। भी चलो वही लै जाने नाल, कह तो सकेंगे भी साडा साडे नाम ते है, वो नहीं कोई ले जा सकता। तो फिर हंकार कदा है, फिर माण किस गल दा। कपड़ रूप सुहावना छड़, दुनिया अंदर जावना, मंदा चंगा आपना आपे ही कीता पावना। साहब जी समझाउंदे आ, कहिंदे इत्थे आया इत्थे आ दुनिया दे विच कुदरत विच सब को जासी, सबना दे जान दी वारी आउनी है। कूड़ करो अहंकारो, तू झूठा अहंकार कर रहे हैं। जदों गल रावण दी आउंदी है ते किड्डी वड्डी उदाहरण दित्ती जांदी है, ते सानू कहा जांदा है ओ मूर्खा, ओ उस वड्डे मूर्ख वल देख लै। लंका गढ़ सोयने का भया मूर्ख, रावण क्या ले गया, की ले गया वो दुनिया चो। इसलिए कूड़ करो अहंकारो, तू ए अहंकार जड़ा ए झूठा।

सतगुरु महाराज जी कृपा करन अपने चरणों के नाल जोड़न बाणी ते बाणी दे धारनी बनाउन परमेश्वर वाहिगुरु जी दे मिलाप विच यह अरदास रोज आपां करदे रहिए। बहुत जन्म बिछरे थे माधो ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म लेखे लग जाए। अज दी विचार करदे आं बेअंत गलतियां भुल्लां होईयां सतगुरु बख्श देन अगे तो समत देन जो अलहणियां दे सिरलेख हेठ अज आपां शब्द नूं विचारन ते समझण दा यतन कीता है गुरु नानक साहब दे राहीं। ये पावन बचन अपने हिरदे च वसा लईए। बेअंत भुल्लां होईयां सतगुरु महाराज बख्श देन अगे तो समत दे के

साचे साहिब क्या नाही करते रहे, करता तेरा सब किस है इसते है सुपावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सचे साहिब क्या नाही करते रहे, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आई वसया, जने सब पुजाइया, सदा कुर्बान किता गुर बेटो इस दियाँ बड़ियाइया। कह नानक सुनो संतो, शब्द तरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच सौ तित कर सुपागे, कर सुपागे शब्द वाजे कला जित कर तारी। पंच दूत दिवस कीते काल कंटक माए।

दुख रोग संताप तरे सुनी सच्ची वाणी संत साजन पहे सर से पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहतूर सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे

हरिया सिखी के संस्वसन निवहित नांदिक मईदा ध्यान अंतर के खालसा जी बोलो जी। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान तर के बोलो जी। प्रथम सर

चिता विचितावन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रसियारे आयत देग तेग फतेह। दिर्द की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल वाले बोलो जी। सिखानु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान प्रोसा दान दान सिरदान नाम दान श्री अमृत सरजिया दे दर्शन इशनान। चौंकिया झंडे वंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन्नी वा मत ऊची मत पत दा रखा वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जियो। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरु धामां दे जिन्हां तो खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दे दार से

सचे पिता वाहिगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जिया दे पावन पवित्र स्थान।

जप तप संयम कर्म न सदा नाम प्रभु का मन अरदा किशो न जाना मत मेरी तोरी बिनवंत नानक ओट प्रभु तोरी ना को मूर्ख ना को सियाना बरतै सब किश तेरा पड़ा डिठे सबे थाव नहीं तुद जिया बहुत पुरख बेदत तातू सोहिया।

सार ना जाना तेरे, सब ते बड़ा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरे। सत नाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मड हंस महला पहला, आव हो मिलो सुहेलियों

0: गए मशकत का नानक ते मुख उजले केते छुटे ना। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की
1: फतेह। तुखा कुर तुम पह अरदास जियो पिंड सब तेरी तुम मात पिता हम बारक तेर तुमरी कृपा मैं सुख नेर कोई न जाने तुमरा अंत उचेते सगल समग्र।

बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दशमी। प्रथम भगवती स्मरक है। गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास साहिब ही सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए। जिस जुठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे आए। घर नौ निदा बेताए। सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दे दर दा ध्यान धर के बोलो जी।

0: पया वंश के आम देख चलाई तेग वाही देख के अंडठ कीता तेना प्यारिया सच आरिया दिख मई दा ध्यान तर के खालसा जी बोलो जी। जिन्ना सिंगा सिंघनिया ने धर्म हेत शीश दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लहाइया चरखड़िया ते चढ़े तनारिया नाल चराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा ले कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वासा नाल निवाही तना दिख मई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी। प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु चेतावे चेतावन का सदका सर्व सुख हो पे जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तर से अरे आई तो देख तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखानु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर जियां दे दर्शन स्नान चौंकियां झंडे वंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन्नी वा मत उची मत पत दा रखाप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जिया श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरुधामां दे जिन्हां तों खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दे दार सेवा संभाल दा दान अपने खालसा जी नूं बख्शो। हे निमानियां दे मान नितानियां दे तान नियोटियां दी ओट सचे पिता वाहिगुरू धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जियां दे पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जी विखे धन धन श्री गुरु रामदास सचे पातशाह जियां दे ज्योति ज्योत दिवस नूं समर्पित गुरमत दीवान सजाए सजे दीवाना अंदर शब्द कीर्तन से पौड़ियां आनंद साहब जी के पाठ की अरदास है जी। अखरवादा घाटा भुल चुक माफ करनी आप दियां दे दर ते समूह साध संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी तिल फुल भेटावां दर प्रवान करनियां यात्रावां सफल करनियां दरों घरों गुर सिखी जीवन नाम बाणी दियां दातां बख्शनियां कलंगी धर सचे पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी आप जियां ने कृपा करनी मेहरामत करनी आउन वाला समा आप जियां दी याद आप जियां दे प्रेम दे विच बतीत करवावना आप जियां दे हजूर पवित्र कड़ा प्रसाद जी देख सज के हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद समूह साध संगत विच वरतौन दी आग्या बख्शो जो जी सके आप जियां दा पवित्र नाम सतनाम श्री वाहिगुरु जपे आप जी करो कृपा अपनी अमृतमयी बाणी विचों पावन पवित्र हुक्म दी दात बख्शो हुक्म अनुसार जीवन जिउण दी समर्था बख्शो अखरवादा घाटा भुल चुक माफ करनी सिख पढ़दे सुणदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा पला। दोहरा गया भई अकाल की सब सिखन को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी माने जो प्रभु को मिल वोच है राज करेगा खालसा खुआर हुए सम लेंगे, खुआर हुए सम लेंगे, बोले सोनिहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दंडौत वंदनियन कवार, सर्व कला समरथ।

जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो होए सो मने, पव सागर बंधे सिख तारे सो प्रसन्न।

ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ ਕੇਵਲ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗਮੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵਡ ਚੀਰਾ ਰਹਾਉ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੁਦਵਣ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨਾਹੀਂ ਠੱਕ ਰਹਾਈਆ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵੇਚਾਰਾ ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰ ਨਹਾਰਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਊ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ ਉਤ ਭੁੱਖੇ ਖਾਏ ਚਲੀਹੈ ਦੁੱਖ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੇ ਨਾਏ ਰਹਾਉ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਆਖ ਥੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੈ ਭੋਗ ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀਂ ਕੋਏ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ ਜੇ ਵੱਡੇ ਆਪ ਤੇ ਵੱਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਜੈਨਾ ਦੇਨਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੀ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਇ ਸਨਾਤ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਉ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵੱਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਹਿ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਖਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਾਨ ਚਿਤਵਹੇ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਓ ਪਰਿਆ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਤਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬੈਂਤਾ ਕੋਏ ਨ ਕਿਸਕੀ ਧਰਿਆ ਸਿਰ ਸੇ ਰਿਜਕ ਸਵਾਹੇ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ ਊਡੇ ਊੜ ਆਵੇ ਸੈਂ ਕੌਂਸਾਂ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ
तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन में ही सिमरन क्रिया सब निधान दस अष्ट सदान, ठाकुर कर तल त्रिया जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत ना पारा भरिया सब निदान दस अष्ट सदान, ठाकुर कर तल त्रिया जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत ना पारा भरिया। राग आसा महला चौथा, सो पुरख इक ओंकार सतगुर प्रसाद, सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर गम्मा गम्मा पारा सब त्यावहीं सब त्यावहीं, तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी, तू जीहां का दातारा हर त्याब हो संतो जी, सब दुख विसार नहारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज बडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिन अवर न जाना तू बार बरम बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेव है जो सेव है तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा हर त्यावहीं हर त्यावहीं तुद जी, से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पाए जैनो हर त्याया जी, तिन टूटी जम की फांसी जिन निरपाओ जिन हर निरपाओ त्याया जी, तिन का पाओ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करें हर पूजा जी, तप तप ही जप ही बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास्त्र जी, कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी, जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जे बड़ अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू नहीं चल करता सोई तुद आपे पावै सोई वरतै जी, तू आपे करहिं सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा, तू करता सचियार मेंडा साई जो तो पावे सोई थीसी, जो तू देह सोई हो पाई रहो सब तेरी, तू सबनी ते आया जिस नाव कृपा करें तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुग वाया
तुदे आप बिछोड़या आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिंदु जा कोई नाही, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल बिछोड़या संजोगी मेल, जिसनों तू जाने सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिंदु जा अवर ना कोई, तू कर कर वेखे हैं जाने हैं सोए, जन नान गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला तित सरवरड़े, भैरे निवासा पानी पावक तिन्ह किया, पंक जो मह पग नहीं चले, हम देखा तह डूबियले, मन एक न चेतस मूड मना, हर विसर तेरे गुण गले आ रहाओ, ना हो जती सती नहीं पड़या, मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणव तुणानुक तिनकी शरणा, जैनों तू नाही विसरया, आसा महला पंजवा, भई प्राप्त मानुक देहुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरा किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, श्रम जाम लाग पव जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जन्या हर राया, कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जन्या हर राया, कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा। इक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चाओ पाई, हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरण मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सब तुम कावो हो, आभा दे मुहे बचावो हो, सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सबेर इनको आज संगरिए, पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन शतर हमारे मारी है, आभाद मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है, हो जो सदा हमारे पच्छा, श्रीयस जो करी हो रक्षा, राख ले ओ मुहे रखन हारे, साहिब संत सहाये प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता, काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिव जो अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो,
वेदराज ब्रह्मा जूथी हो जौन काल सब लोक सवारा नमस्कार हैं तहें हमारा जौन काल सब जगत बनायो देव दैन जक्षण उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी शिव कन को शिव गुण सुख दियो शत्रन को पलमो बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत चिंटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्टि कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी।

अर अलम ड्रंकार निर्विकार निर्लंब आद अनीन अनाद असंब ताका मूढ़ी उचारत पिदा जाको पेवना बावत बिदा ताको कर पाहण अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव ड्रंकार का चीनत नै भेव आप अपनी बुध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा किह बिद सजा प्रथम संसारा इक्कै रूपे अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कहीं पूपा अंड जे रसे तज कीनी उत्पुज खान बहर रच दीनी कहो फूल राजा हवे बैठा कहो सिमट भयो शंकर अकैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंपव अजुगा स्रूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखियो बारे असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रणगाता जे अस्तु तव शरणी परे तिनके दुष्ट दुख त हवाय मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को इक बारते है ताकि काल निकट न है रक्षा हुए ताही सब कल्ला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्कल्ला कृपा दृष्ट तन जाहे न हरे हो ताकि ताप तनक में हरे हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शहाशवै सके ना कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांसते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दुख तेरा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो बारी सर्व ठोर मोह सहाई दुष्ट दुख ते ले हो बचाई खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो बारी सर्व ठोर मोह सहाई दुष्ट दुख ते ले हो बचाई सवैया पाए गहे जबते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना माने सिमृत शास्त्र वेद सभाए बहु भेद कहे हम एक ना जाने सिरियस पान कृपा तुम भी कर मैं ना कहो सब तो ही बखाने दोहरा सगल दोहार कौ छाड़ के गए हो तो हारो बही गहे की लाज अस गोविंदास तोहा सगल द्वार को छाड़ के गए हो तोहारो द्वार बही गहे की लाज अस गोविंदास तोहार राम कली महला तीजा अनंत इक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता वाया सहज सेती मन वजियां वादाइया राग रतन पर वार परियां शब्द गावन आइया शब्द तंगा बो हरी केरा
मन जिन

नानक तैस कहोआ तित कर अनाहद बाजी आनंद सुनहौ वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल बसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भय सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पनी कहते पवित सतगुर रहा पर भूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहा भर हुरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदामणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पइयो जिसका सबसे अदारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उदारो एहे वस्त तजी नह जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिय सब

लिहौ सच्चड़ा नाम लय रोह बिरह तन का अपना साहिब संभाल साहिब सुमल पंथ निहल असां बे उथे जाना जिसका किया ते नहीं लिया हुआ तिसे का पाना जो तिन कर पाया सो आगे आया।

सच्चिदानं लयं मरणमंदा लोकां आखिए जे मर जाने ऐसा कोई सेव्यो साहिब समरत अपना पंत सुहेला आगे होए पंत सोहेले जावो तां भल पाहो आगे मिले बड़ाई भेट स्यों जावो सच समावो तां पत लेखे पाई महली जाए पाव खसमे पाव हो रंग स्यों रलिया माने मरण न मंदा लोका आखिए जे कोई मर जाने मरना मनसा सूरिया हक है जो होए मरण परवानो सूरे से अगे आखिया दरगह पावे सच्ची मानो दरगह मान पावे पत स्यों जावे आगे दुख न लागे कर एक ते आवे तां भल पावे जित से वे पौ भागे ऊंचा नहीं कहना मन में रहना आपे जाने जानो मरण मुंसा सूरिया हक है जो है मरहे परवानो नानक किसनो बाबा रोई है बाजी है एहो संसारो कीता वेख साहिब अपना कुदरत करे बीचारो कुदरत बीचारे धारन धारे जिनकी आसो जाने आपे वेख आपे बूझे आपे हुकम पछाने जिन किछ किया सोई जाने ताका रूप अपारो नानक किसनो बाबा रोई बाजी है एहो संसारो जिन किछ किया सोई जाने ताका रूप अपारो नानक किसनो बाबा रोई है बाजी है एह संसारो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

तुमरी महिमा वर्ण न साको तो ठाकुर ऊच भगवाना सो कहो टल गुर सेवियनस सहज सुभय दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए।

का सोहेलों अरिजित सोहेले सदा सुख होय रहाओ नित नित जिड़े संभालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवे ते सदा ते कमण समार संबत सा लिखिया मिल कर पावो तेल देहो सजन आसीसड़िया ज्यों होवै साहिब सो मेल कर करियो पहुँचा सदड़े।

को वेश अनेक बाबा जय कर करते कीर्त होए सो कर राख वडाई तुए रहाओ विश्वे चसिया कड़ियाँ पैरां थिती वारी माहुआ सूर्य को रुत अनेक नान करते के केते वेश रावत ना श्री माला पहला गगन में थाल राव चांद दीपक बने तार कमंडल जन कमोती धूप माले अण लो पवन चौरो करे सगल मन राय फुलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहत्ता शब्द वाजंत भेरी रहाओ सहसताव नैनन नैने तोहि कौ सहस मूर्त नायक तोई सहस पद बिमल अनेक पद गंध मिन सहस तव गंध विचलत मोई सब मैं जोत जोत है सोए तिस दे चानन सब मैं चानन होए गुरसाखी जोत प्रगट होए जोत सुभावे सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अंदनो मोए आई प्यासा कृपा जल दे नान सार कोए जाते तिरणाए वासा रा गौड़ी पूर्वी माला चौथा काम क्रोध नगर भाव भरिया मल साधु खंडल खंडा है पूर्व लिखित लिखे गुर पाया मन मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पनवंडा है कारण डाउत पनवंडा है राहो साख तारा साधन जानिया तिने अंतरों में कंडा है ज्यों ज्यों चले चुमे दुख पावे जमकाल सह से डंडा है हर जन हर हर नाम समाणी दुख जन मरण पव खंडा है अविनाशी पव पाया परमेश्वर भाव शोभ खान ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे राख राख और वड्डा है जन नानक नाम दा टेकरना मेस कमंडाए राग गौड़ी पूर्वी माला पंजवा करो बिनंती सुनो मेरे मीता संत टैल के बेलाइया खाट चलो अरला आगे बसन सुहेलाया उद कड़े दिन सरै नारे मन गुरमल का सवारे रहावे संसार विकार संसे मैं तरयो ब्रह्म ज्ञानी सहज गाए ब्या वैरस कथ कथा तन जानी जा को आए सोई ब्याज वर कुरते मने बसेरा निज कर मैल पावो सुख सहजे बौड़ नो

काची देहे मोह फुन बांदी सठ कठोर कुचिल कुज्ञानी तावत भ्रमत रहन नहीं पावत पार ब्रह्म की गत नहीं जानी जोबन रूप माया मद माता बिचरत बिकल बड़ो अभिमानी पर धन पर अपवाद नार निंदा यह मीठी जी माहे हितानी बल बंच छप करत उपावा पेखत सुनत प्रभ अंतर जामी सील धर्म दया सुचनासत आयो।

0: धूर्त निवारण शब्द रे घावे गंभीर तीर मत सागर जोगी जंगम त्यांतरे गावे इंद्राज भगत पहरलादिक आत्म रस जिन जान्यो कब का सो जस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मान्यो कब का सो जस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मान्यो।
1: हमें दृष्टि शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सब बल सदा सुख मन वस दुख संसार खोवे गुर नवनिध दरियाओ जन्म हम कालख तोवे सो कहो टल गुर सेविया एहनस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए गुर अमरदास परसिए पोहम पातक बिनस गुर अमरदास परसिए सिद्ध साधक आसास गुर अमरदास परसिए ध्यान लहिए पौ मुके गुर अमरदास परसिए अपो लबे गौ चुके एक बिन दुगन जौ तौ रह जास मंत्र मान वैल है जाल पाप दारथ इतड़े गुर अमरदास डिठ।

0: ज्ञान और त्यान तस्यों तत् मिलावे, सच सच जानिए इक चित्ते लिव लावे। काम क्रोध वश करे पवन उड़ंत न तावे, निरंकार के वसे देश हुकम बूझ विचार पावे। काल माहे रूप करता पुरख सो जाने जिन किच कियो, गुरु मिलियो सोए पिखा कहे सहज रंग दर्शन दियो।
1: कन हर बूंद बसोरो मावल, कुसम बसंत गनंत नयावे। रव सस किरण उदर सागर को, गंग तरंग अंत को पावे। रुदर त्यान ज्ञान सत गुर के, कब जन पल उन्हें जो गावे।

अहनस सहज सुभाई दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसाम दी नूर अरसों कुरसों हो चटिए तुद डिठे सच्चे पात शाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पात शाह सिर शाह दे शाहो जिस पास बैठियां सोही है सबना दावे साहो जिस पास बैठियां सोही है

नानक बात बताई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दीन दुनिया दे मालक, सरबे कायनात दे सांझे रहबर, जुगो जुग अटल चवर शतर तख्त, तथा वक्त दे मालक हाजरा हजूर, जहरा जहूर समर्थ गुरु साहिब, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभायमान साध संगत जी, आप जी बड़ भागे हो जो अमृत वेले दे दीवाना अंदर हाजरियां भर के अपना जीवन सफल कर रहे हो। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का अज का पावन मुखवाक सोर ठराग अंदर नौवें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज बख्शिश करते ने, जो सतगुरु जी की बाणी पावन अंग 631 632 उपर सुभायमान है। सतगुरु जी कृपा करन अपने हुक्म अनुसार जीवन जीवन दी समर्था सूझ बख्शन जी। आओ अज दे इह पावन बचन अपने हिरदे अंदर वसाउण दा यतन करिए। सोरठ महला नावा, मन रे कौन कुमत तै लीनी, पर दारा निंदया रस रचियो,

अपने आप साथी अपने रचना दोए पितरे साथी क्रिया संजीत पूछा दार दार कंपाया तुझे देवे तेरे पिता दो जाने सबसे बिना सचिन कुलाव पर्याय सुन्दर

0: प्राण उस्माद संजोग उस्माद गुंजोग उस्माद पोह उस्माद पोह उस्माद सुप्त उस्माद सलाहा उस्माद जुड़ उस्माद राहा उस्माद नेड़े उस्माद दूर उस्माद देखे हाजरा हजूर वेख उड़ान है उस्माद नानक भुजन पूरा पाप महला पहला
1: कुदरत दिस है कुदरत सुनिए कुदरत पहो सुखसार कुदरत पाता लिया काशी।